0: राम रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम
1: पतित पावन सीता
0: राम रघुपति राघव राजा राम
1: पतित पावन सीता राम
0: रघुपति राघव राजा राम राजा राम।

0: யாரா லிசனிங் டு எம்ஓபி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 107.8. இங்கிலீஷ் தமிழ் மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம எம்ஓபி ரேடியோ ஹிந்திலையும் ஷோஸ் தொகுத்து வழங்குறாங்க. இப்ப நமக்காக அடுத்து வர ஷோ ஹிந்தி ஒலிபரப்பு சேவை.
1: नमस्कार, आज हिंदी सीआरएस 107.8 एफएम में आपका स्वागत है. आज विस्कॉम प्रथम वर्ष से माँ के विषय पर एक मनोरंजन कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा. प्रस्तुत कार्यक्रम में शामिल होंगी दमदार कहानियाँ, कविताएं, शायरी और हमारे छात्रों से गाए हुए कुछ गाने. तो आराम से बैठकर इसका आनंद लीजिए. पहली पेशकश के लिए पूर्ति माँ के विषय पर अपना दृष्टिकोण देगी.
2: नमस्कार, आज का हमारा विषय है माँ. माँ शब्द सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, पर आज दिन तक कोई महाज्ञानी या महापुरुष इस शब्द को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सके हैं. कोई भी इस शब्द की पूर्ण खूबसूरती को बयां नहीं कर सके. हमारी माँ हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है. एक माँ और उसकी संतान के रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं, ये रिश्ता शब्दों के परे है. माँ असीम प्यार और ममता का स्त्रोत्र है. माँ हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन को सही मायनों में सुंदर और सार्थक बनाती है. हमारी माँ ने अनगिनत बार हमारी छोटी से लेकर बड़ी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया है. कितनी बार हम अपनी माँ से ये कहते हैं कि मम्मी थैंक यू, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. कितनी बार हम अपनी माँ को ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे जीवन में कितनी खास है, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. आपके जीवन की इस परी को सिर्फ आपका प्यार चाहिए. वो हमसे और कुछ नहीं मांगती, बिना स्वार्थ के अपना जीवन दे देती है अपनी संतान के लिए. तो आइए आज से हम सब मिलकर छोटी सी कोशिशें करते हैं अपनी माँ को खुश करने के लिए. धन्यवाद.
1: अब मित्सु आपको एक शानदार कविता सुनाएगी.
3: माँ, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. तूने जब धरती पर पहला श्वास लिया तब तेरी माँ तेरे पास थी. माँ अंतिम श्वास ले तब तो उनके पास रहना. जिस मुन्ने को माँ ने बोलना सिखाया था, वह मुन्ना बड़ा होकर माँ को मौन रहना सिखाता है. माँ, पहले आंसू आते थे और तू याद आती थी, आज तू याद आती है और आंसू आते हैं. संसार की दो बड़ी करुणता, माँ बिना का घर और घर बिना की माँ. 4 वर्ष का तेरा लाडला जो तेरे प्रेम की प्यास रखे, तो 40 वर्ष की तेरी माँ तेरे प्रेम की आस क्यों न रखे. 1.5 किलो दूधी 1.5 घंटे तक उठाने से तेरे हाथ दुख जाते हैं. माँ को सताने से पहले इतना तो सोच, तुझे 9-9 महीने पेट में कैसे उठाया होगा. माँ की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, लड़की घर छोड़े तब, लड़का मुंह मोड़े तब. पेट में 5 बेटे जिसको भारी नहीं लगे थे, वो माँ बेटों के 5 फ्लैट में भी भारी लग रही है. बीते जमाने का यह श्रवण का देश कौन मानेगा. माँ और क्षमा दोनों एक है, क्योंकि माफ करने में दोनों नेक है. बचपन में जिसने तुझे पाला, बुढ़ेपन में उसको तूने नहीं संभाला, तो याद रखना तेरे भाग्य में भड़किएगी ज्वाला. जिन बेटों के जन्म पर माँ ने हंसी खुशी से पेड़े बांटे, वही बेटे जवान होकर कानफूसी से माँ को बांटे. हाय कैसी करुणता. जब छोटा था तब माँ की श्याय गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली रखता है. रे पुत्र, तुझे माँ को गीलेपन में रखने की आदत हो गई है. घर की माँ को रुलाए और मंदिर की माँ को चुनरी उड़ाए. याद रखना मंदिर की माँ तुझ पर खुश तो नहीं, शायद खफा जरूर होगी. आज तू जो भी है कुछ है, वो माँ की बदौलत है, क्योंकि तुझे जन्म दिया माँ तो देवी है. गर्भपात करके वो राक्षसी नहीं बनी, इतना तो सोच.
1: अब मरियम माँ की ममता पर एक खूबसूरत कहानी पेश करेगी.
4: माँ, तुम भी ना बहुत सवाल करते हो. मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, एक बार ठीक से समझ लिया करो ना. 2500 बार पूछ चुकी हो. रानी बुआ के बेटे की शादी का कार्यक्रम, समय पर आपको ले चलेंगे ना. बुनबुनाता हुआ बेटा बोले जा रहा था. अब बार बार मत पूछना, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है. और वो बोझ उठाकर निकल गया. अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आए. आजकल कुछ याद ही नहीं रहता, पर फिर भी बरसों पुरानी बात याद थी. यही मुन्ना दिन में एक ही सवाल 100 मरतबा पूछता था. माँ बताओ ना, तितली का रंग हाथ में क्यों लग रहा है. माँ हमें मंदिर क्यों जाना है. खाने में क्या है, हमें सोना क्यों है. और माँ उसके हर सवाल का 100 मरतबा जवाब देती थी. यही है एक माँ की ममता.
1: हम शायर तो नहीं, मगर श्री आपको एक दमदार शायरी सुनाएगी.
2: माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ. थक गया हूँ, मुझे अपने आंचल में सुलाओ। उंगलियां अपनी फेर कर बालों में मेरे, एक बार फिर से बचपन की लोरियां सुनाओ।
1: हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैनब आपको कुछ मजेदार चुटकुले सुनाएगी। माँ बेटे को पूछती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा बोलता है, माँ बेटे को पूछती है, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा कहता है, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ खुश होके बोलती है, बहुत अच्छे, क्या पढ़ रहे हो? बेटा कहता है, आपकी होने वाले बहू के मैसेजेस। एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था, जिसका नाम था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ पूछती है कि तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक तरह से हो भी रहा है या नहीं। बच्चा मम्मी से पूछता है, माँ इस बार हम पटाखे इस दुकान से ले गए। मम्मी कहती है, लेकिन बेटा ये तो गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा बोलता है, पापा तो कहते हैं कि सारी फुलझड़ियाँ यहाँ रहती हैं। माँ पूछती है, बेटा आजकल बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? बेटा पूरे फिल्मी स्टाइल में बोलता है, यू तो मैं बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। गौर से सुनिए, क्योंकि सातविका आपको एक पाक विधि पेश करेगी।
5: दूध के लच्छों के साथ मिले हुआ आम का खास स्वाद का सभी को बेहद पसंद आएगा। आवश्यक सामग्री आम 2, चीनी 70-80 ग्राम, काजू 4, बादाम 4, इलायची 4, पिस्ते 8-10, दूध 1 लीटर। विधि, दूध को कढ़ाई में डालकर गर्म करने रखिए। दूध में उबले आने पर गैस धीमी मीडियम कर दीजिए। दूध पर मलाई की हल्की परत जमने पर उसे कलछी से उठाकर कढ़ाई के किनारे लगा दीजिए। कलछी को कढ़ाई के तेल तक ले जाते हुए चलाइए, ताकि दूध तेल पर नहीं लगे नहीं। कढ़ाई में दूध गाढ़ा होकर एक तिहाई रह जाने तक पका लीजिए। बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर तैयार कर लीजिए। पिस्ते को लंबाई में पतला पतला काट लीजिए। इलायची को छिलकर इसके दाने का पाउडर बना लीजिए। आम को छिलकर इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर तैयार कर लीजिए। दूध के गाढ़ा होने पर इसमें चीनी और कटे हुए काजू बादाम पिस्ते डालकर मिक्स कर लीजिए और गैस बंद कर लीजिए। अब रबड़ी में आम के बारीक कटे हुए टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाइए और इलायची पाउडर डालकर मिला दीजिए। आम की स्वादिष्ट लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है। इसे प्याले में निकाल लीजिए और ऊपर से आम के टुकड़े और काजू बादाम पिस्ते डालकर गार्निश कीजिए। आम की रबड़ी को आप फ्रिज में रखकर 2-3 दिन तक खा सकते हैं। एक सुझाव है कि आम रबड़ी के लिए आम मीठा और बिना रेशे वाला लेना चाहिए, और आम को रबड़ी में मैश करके भी मिलाया जा सकता है। धन्यवाद।
1: अभी प्रियोमा माँ के विषय पर आपको 5 दमदार चलचित्र के बारे में बताएगी।
6: नमस्कार। बॉलीवुड फिल्मों ने माँ की ममता को बहुत ही सुंदरता से दिखाया है। आज आपको ऐसी फिल्मों का नाम बताऊंगी जो आप अपनी माँ के साथ आराम से इनका आनंद उठा सकते हैं। ममता। ममता एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। यह एक कहानी है जिसमें एक माँ अपनी बेटी के सपनों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। तहजीब। यह फिल्म एक माँ और बेटी की खट्टी मीठी रिश्ते का वर्णन करता है। मदर इंडिया। यह कहानी बताती है कि माँ अपने ही बच्चों के को कैसे बड़ा करती है एक पिता के सहारे के बिना। करण अर्जुन। यह एक माँ की भरोसा है कि उसके बेटे उनके मौत का बदला लेंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। धन्यवाद।
1: तेजसा आपको माँ के विषय पर कुछ मधुर गानों के नाम बताएगी, और भाविका और संजना इन गानों को अपनी मीठी आवाज में गाएंगे।
7: आज हमारे बीच दो बेहतरीन गायिका संजना और भाविका मौजूद हैं। ये हमारे लिए माँ की प्रशंसा करते हुए 3 गाने गाएंगे, जो है जन्म जन्म फटा पोस्टर निकला हीरो से, लुक्खा छुप्पी जो फिल्म रंग दे बसंती से है जिसे लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है, और तीसरा गाना मेरी माँ। तो आइए अब भाविका और संजना आप अपनी मधुर स्वरों से महफिल में 4 चांद लगाएंगी।

आशा है कि आपको ये मनोरंजन कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार तक इंतजार कीजिए। मैं भूमिका आर, हिंदी 107.8 FM, अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।